0: दरिया इलाही ते हर दम ओ वगदा ओ तेरा ओ एक कतरा जे तू बख्शे मैनो आका कम बन जा आवी मेरा ओ मैं नीवी ते मेरा मुर्शिद ओ उच्चा ते मैं संग उच्चिया दे ओ लाया ओ दिल भर दे दरवाजे ओ उते ते मोक मिलाए ओ चुका ते नवे नवे ना ओ यार बना आये ते वांग कमी इन आला
1: Radio Ciroma 105.7 FM
2: www.ciroma.org